0: बदलती हुई दुनिया है और अगर हमें अपनी आज़ादी कायम रखनी है, अगर हमें प्रगति करनी है तो बहुत तेजी से हमको भी अपने देश में परिवर्तन लाना है और मुकाबला करना है। अनेक प्रकार के मुकाबले होते हैं, एक तो युद्ध लड़ाई हो उसमें उसका सामना करना है।
1: चारू
2: हाँ
1: ओके ले
2: हाँ हाँ ओके हाँ
0: भारत की सेनाओं ने इस बहादुरी से हमेशा हमले का सामना किया और जैसा जोरदार जवाब दिया। लेकिन हमें देखना है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है